0: वायरनेट को बाय वन गिफ्ट वन फ्री ऑफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट और 2700 में खरीद करता सुई इंटरनेट पैकेज नया को लागी गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आपको लगी एक महीना फ्री इंटरनेट वायरनेट अब सब कनेक्टेड
1: स्वदेश तथा विदेश का 5-स्टार होटल रेस्टुरेंट रिसोर्ट 100% रोजगारी को सुवर्ण अवसर
2: क्षेत्रीय भित्री नेपाल सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होटल तथा पर्यटन तालिम में भर्ना खुलियो
1: राष्ट्रीय पर्यटन विकास तथा होटल व्यवस्थापन तालिम काठमाडौँ को 50% सहयोग में मात्र 40 जना को लागि
2: अब दांग को घोराही बजार में रहेको होटल पौवा में होटल तथा पर्यटन तालिम संचालन हुँदैछ नोट सीट र समय एकदम सीमित छ आज संपर्क गर्नुहोस्
1: तालिम में दिइने विषयहरू
2: स्पेशल कुक तालिम इंडियन चाइनीज कन्टिनेन्टल र इटालियन
1: स्पेशल शेफ तालिम
2: जापानीज सुशी तालिम
1: वेट्रेस
2: टूरिस्ट गाइड
1: हाम्रा विशेषताहरू
2: स्वदेश तथा विदेश का 5-स्टार होटल मा काम गर्नु भएका अनुभवी सेफ प्रशिक्षकहरूबाट तालिम दिइने
1: एक्स्ट्रा प्राक्टिकल अथवा जब गर्न चाहेमा काठमाडौँ पोखरा नेपालगंज र दाङमा रहेका विभिन्न स्तरीय होटलहरूमा पठाइने
2: जापान दुबई युरोप का विभिन्न देशहरूमा जान चाहेमा विश्वासिलो मेन पावर को व्यवस्था भएको
1: टाढाबाट आउनेहरूका लागि खाना र बस्नको विशेष व्यवस्था मिलाइनेछ
2: तालिम साथ अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र प्रदान गरिनेछ अन्य थप जानकारी को लागि होटल पौवा घोराही बजार क्याम्पस रोड दाङ
1: सम्पर्क मोबाइल 98410-17-09
2: आयोजक नेशनल टुरिज्म डेभलपमेन्ट एन्ड होटल म्यानेजमेन्ट ट्रेनिङ प्राइभेट लिमिटेड थमेल काठमाडौँ नेपाल

0: प्रोडक्ट हरू कोकोनट चोकोनट भिटा मिल्क बटर प्राइड क्रीम मिल्की बटर तथा डाइजेस्टिव होल व्हीट बिस्किट
1: हेरा हेरा हेरा यो हो हाम्रो चोइस कोदोको डाइजेस्टिव र कुकी छ है नाइस
0: अद्गुरी।

0: प्रोडक्ट हरू कोकोनट चोकोनट विटा मिल्क बटर प्राइड क्रीम मिल्की बटर तथा डाइजेस्टिव होल व्हीट बिस्किट
1: हेरा हेरा हेरा यो हो हाम्रो चोइस कोदोको डाइजेस्टिव र कुकी चाहिँ नाइ
0: अडगुरी।

राम राम सन्जेक 5 बजे थारू भाषक मध्यपश्चिम खबरमा सारिक राम चौधरी हार्दिक स्वागत बा। लुम्बिनी प्रदेश सरकारसे सीमित स्रोत साधन बढ़्दो दायित्व विकास निर्माणको अपूरा काम हुन मध्यनजर कर्ती दायित्व भुक्तानी प्रदेश गौरवको योजना बहुवर्षीय तथा कर्मागत योजना हुन उच्च प्राथमिकतामा धरिकन बजेट तयारी राखल। प्रदेश सरकारसे आगामी आर्थिक वर्ष 2083-84 बजेट सोमबार असार 1 गते प्रदेश सभाको 8 अधिवेशन अन्तर्गत 9 बैठकमा सन्ध्या 5 बजे प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्ने बा। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धरेन्द्र कार्कीले बजेट पेश गर्न होइन बजेटमा आगामी बजेट उत्पादन वृद्धि रोजगारी सृजना पूर्वाधार विकास सुशासन तथा सामाजिक न्याय केन्द्रित हुन बतवागिल्पा। सरकारले कृषि क्षेत्रका आधुनिकरण सिंचाई विस्तारसँग कृषि उत्पादन वृद्धि गर्दै आयात प्रतिस्थापन ओ निर्यात प्रवर्धन गर्न नीति बजेटमा समेटिन बतवागिल्पा। युवाहरूलाई लक्षित गरिकन सिक्नुलोक तालिम स्टार्ट अप स्वरोजगार तथा नवप्रवर्धन कार्यक्रम मार्फत रोजगारी सृजना गर्न योजना हुन बजेटले विशेष महत्व देना हो रहल। स्वास्थ्य क्षेत्रमा अस्पताल स्तरोन्नति विशेषज्ञ सेवा विस्तार शिक्षा क्षेत्रमा प्राविधिक शिक्षा सूचना प्रविधि मैत्री शिक्षण प्रणाली तथा खेलकुद पूर्वाधार विकासको कार्यक्रम समावेश गर्ने अपेक्षा गरिएको बा। पूर्वाधार विकास हो अधुरा ओ बहुवर्षीय योजना सम्पन्न गर्न पूँजीगत खर्चको प्रभावकारिता बढ़िन तथा प्रदेश गौरवको योजना हुन निरन्तरता दिन नीति बजेटमा रहन सरकार जना राखल। वस्तुको डिजिटल सुशासन सेवा प्रवाहको सरलीकरण तथा वित्तीय अनुशासन हनफे प्राथमिकतामा दिइन जनागिल्बा। चालू आर्थिक वर्षमा 38.91 अर्ब रूपियाँको बजेट अन्नक प्रदेश सरकारसे 38 अर्बको हाराहारीमा बजेट अन्न तयारी कर्लक जनाकिल्बा। सरकारसे यी कलस्टिफे 35-36 अर्ब से ध्यूर बजेटका आकार हजाइसेक्ना अवस्था नै हो। प्रदेश सरकारका द्वास्तर आवधिक योजना दिगु विकास लक्षित तथा समृद्धि लुम्बिनी सुखी नागरिकको दीर्घकालीन सोचना आधार मानकन आगामी बजेट निर्माण कर्किलक बतवागिल्बा। आज विश्व रक्तदान दिवस मतदाताका लागि एक थोपारागत रक्तदान गरी जीवन बचाई नाराका साथ दाङ सहित विश्वको विभिन्न मुलुकमा विविध कार्यक्रमका साथ यी दिवस मनाजिटिबा। सुरक्षित रगत ओ रगतजन्य पदार्थको आवश्यकताबारे चेतना अभिवृद्धि गर्न उसको निशुल्क तथा स्वच्छिक रूपमा रक्तदान गर्न रक्तदाताप्रति सम्मान व्यक्त गर्न उद्देश्यले हरेक वर्ष जून 14 यी दिवस मनाजिठा। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओले सार्वजनिक कर्लक पाचक तथ्याङ्क अनुसार विश्वव्यापी रूपमा सुरक्षित रगतको आपूर्ति सुधार हो उल्लेखनीय प्रगति हुइलसेफे सुरक्षित रगतमा पहुँचको दृष्टिले आही भारी असमानता कायम बा। डब्ल्यूएचओले संकलन कर्लक 132 देशको तथ्याङ्क अनुसार सन् 2013-2023 विश्वभर रगत संकलन करिब 19% से वृद्धि हो रहल। सन् 2023 प्राप्त अनुमानित 12 करोड़ रक्तदाता रक्तदान मध्ये 85% से धीर योगदान स्वैच्छिक तथा निःशुल्क रक्तदाता से आ रहल। यही बीचसम दांगमा त्रिभुवन जेसिस नगर जेसिस से फिर रक्तदान कार्यक्रम को आयोजना कर राखल। सामाजिक सेवाका विविध गतिविधि मार्फत समुदायमा सकारात्मक योगदान पुगिते अहिलेका लायन्स क्लब नारायणपुरसे घोराई उपमहानगरपालिका नौस्थित लरेना वासुदेव मन्दिर परिसरमा भक्तजन तथा पर्यटक सुविधाका लागि प्रतीक्षालय निर्माण गरिराखल। मन्दिर परिसरमा निर्माण गरिएको उक्त प्रतीक्षालयको लायन्स क्लब इन्टरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 325 एन का गवर्नर ज्ञानेन्द्र कुमार श्रेष्ठ से एक समारोह के बीच उद्घाटन कर लगुट। लायन्स क्लब नारायणपुर का अध्यक्ष युवराज पोखरेल का अध्यक्षता में संपन्न कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्र का समाजसेवी स्थानीय जनप्रतिनिधि धार्मिक क्षेत्र का अगुआ तथा लायन्स कर्मी कनक्से उल्लेखित सहभागिता रहल रह। लरेना वासुदेव मंदिर परिसर धार्मिक तथा पर्यटकीय दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में परिचित रहल बा। यहां दैनिक रूप में स्थानीय भक्तजन विभिन्न स्थान से ऐना दर्शनार्थी हुनक आवागमनमा हुना करलबा। मन्दिर लघुरलक पिकनिक स्थलमा समेत मनी हुनक चहल पर रहना हुलकसे बैसना तथा विश्राम गर्न उपयुक्त स्थानको आवश्यकता महसुस गरिकन प्रतीक्षालय निर्माण गरिगिलक अध्यक्ष पोखरेल बतवा राख्ल। उहाँको अनुसार लायन्स क्लब नारायणपुरसे करिब 60,000 रूपियाँ खर्च गरिकन प्रतीक्षालय निर्माण गर्लक हो। उद्घाटन समारोह सम्बोधन गर्दै गवर्नर श्रेष्ठले लायन्स क्लबसे सञ्चालन गर्न सामाजिक सेवामूलक कार्यक्रमको समाजमा सकारात्मक प्रभाव प्रतिरोधक बतवा राख्ल।
छुइठा ताजुक्ताहरू भाषक मध्यपश्चिम खबर अत्रह काल सन्ध्या फेथाहरू भाषक मध्यपश्चिम खबर सुन्न सेक्ने भाटी अखसक खबरमा से समाचार कक्षको सक्कु संग्रहणसँग मैशालिक राम चौधरी विदाई छु लिरी मध्यपश्चिम ओनिटी रवि राम राम।

आवाज पश्चिम नेपाल को आवाज आवाज हिंद को आवाज जो हो रेडियो मध्य पश्चिम FM 91.4 मेगाहर्ट्ज़।